92.7 FM का गया और सिर्फ 93.7 FM के नो एंड इट्स आई डोंट केयर एंड शी रन फॉर यू दैट्स वाज ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस किना मामलीशा रोबेट मगे दाह पुसे जो मरामी मरामी सलामत पुहा से जो पाई किने जान यू नो थैंक यू सो मच आज सदले सदले सदले सदले आ इशा मगे दाह पो ना सर भाई पिना शा शाओ तन्या ito pala ito pala ito pala ito pala ito pala ito pala sandali sandali ha isa shout out lang natin ang mga taga Antelayer air conditioning si na Michael Saclote ganating kina Michael German and kay Mayan Fuentes ganating kina Rosaline ano to Bijiga o Bihiga at kay George Abesha naminaw sila karon. Maraming maraming salamat. Sana magkita inyong hapon diha o say inyong merienda. Sige magpabugnaw diha ba Antelayer aircon eh dapat may